करना था यहाँ आदमी पूरी जिंदगी अपनी किस्मत स्लो ट्रैक से फास्ट ट्रैक लाने में निकाल देता, पर ढाई घंटे में मेरी किस्मत ऐसे स्लो ट्रैक से फास्ट ट्रैक पर आ जाएगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। सजा मजा बन जाएगी।

0: है
1: लाइका रेडियो।
2: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
0: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
2: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
0: गारंटेड
2: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे।
3: साउथ हॉल ट्रेवल
0: फोन 02085748410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhujar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Like Our Radio.
4: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs.
5: Borderless World presents Atif Aslam live in the UK.
4: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
5: Book your tickets now at AXS.
4: Zembe Productions, supported by Rianne's Music.
5: Exclusive radio partner, Leica Radio.
1: Don't forget to turn on Kush with the Mid-Morning Show from 10 a.m.

0: ये है लाइका रेडियो टीवी एंड C5 प्राउडली प्रेजेंट हमारे राम प्रोड्यूस्ड बाय फेलिसिटी थिएटर इंडिया और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एज रावण और राहुल आर भुजर को प्रभु श्री राम के रूप में रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई इवेंटिम अपोलो हैमरस्मिथ हमारे राम बुक योर टिकट्स नाउ विजिट www.eventimapolo.co.uk एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका Radio.
1: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
2: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
1: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
2: And you didn't pay those massive roaming charges?
1: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
3: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
4: बजट टाइट पर ब्रांड का इंपैक्ट बड़ा चाहिए लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज रेडियो डिजिटल या इवेंट सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड जल्दी करिए कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com
0: Sounding good throughout the night with the biggest soothers it's your Laika Radio

0: Network across London, Manchester and the Midlands.
1: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है. Lyca Radio और Lyca Gold आपकी आवाज बन सकते हैं. On air हो, online या on ground, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा. संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@lycaradio.com.
0: Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Lyca Radio.

जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, मन्ने पत्सियों प्रगट जाए, मन्ने मग ना चले पंथ, मन्ने धर्म सेती सनबंध।

मूर्ख अंध गोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाए जोर असंख गलवड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच मल भक खाए असंख निंदक सिर करे भार नानक नीच कहे विचार वार्या।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखे की ता अपना जिव तिस दी वड्याई जो तिस भावे सोई करसी हुक्म ना करना जाए सो पातशाह साहिब नानक रहन जाए।

कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनात जुग जुग एको वेस एक दूजी बोला खोवें लख होवें लखवीस।

जोर जोर ना जीवन मरण ना जोर जोर ना राज माल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा सच्चा दरबार तिथे सोन पंच परवान।

0: Isha Basmati Rice, available at Kacha Bazaar, Whitechapel and Beckton Branch.
1: Isha Basmati Rice.
2: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
3: एक बढ़िया कड़क गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो आए हाय मजा आ जाए।
4: अरे समझो, हो गया। रॉयल चाय है ना, अब भी बन जाएगी। सिर्फ पैकेट खोलो और गर्म पानी में घोल लो, चाय तैयार, वो भी रॉयल टेस्ट के साथ। रॉयल चाय, झटपट, कहीं भी, कभी भी।
5: At Aldi, we think low prices are for everyone. And boy, do we mean everyone. You, your nan, your cockapoo, your ex-situationship, Barbara from next door, traffic wardens, Piers Morgan, even that annoying guy James from finance. Yep, low prices should be enjoyed by all, not just those with a membership, what's it? So Aldi don't do one. No points, no cards, no faff. Aldi, which cheapest supermarket? Even without a loyalty thingy.
6: Every child deserves a childhood, but many children in India are forced to leave school far too early. Cry UK is helping children stay in school and build brighter futures. Just £25 could help two children continue their education. Visit www.ukcry.org and help to make a difference.
7: हल्के फुल्के moments को और भी खास बनाए जैमिन स्नैक्स के हल्के फुल्के puff bites के साथ।
8: Rice कौन से बने light और quality में बेस्ट? जैमिन पफ बाइट्स, जो है बारबेक्यू, लेमन चिली, मस्त मसाला और मैक्सिकन साल्सा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल।
7: जैमिन पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
9: काश मेरा मेरी हो जाए, चाहे एक दिन के लिए सही,
10: एक मिनट के लिए मेरे आंखों में देखो।
11: A story full of heart, now on the big screen.
12: ये दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है,
9: पर कल तो मैं ये दिन याद नहीं रहा।
11: Aamir Khan presents Ek Din is now showing in cinemas. Book your tickets and watch it today.
13: આ સપ્ટેમ્બર પેરિસમાં ઇતિહાસ લખાઈ રહ્યો છે.
14: બીએપીએસ મંદિરનું ઓપનિંગ અને સ્ટાર ટૂર્સ તમને લઈ જઈ રહ્યું છે આ પવિત્ર યાત્રા પર.
13: યુરોપના 3-9 દિવસના ટૂર્સ,
14: ફ્રાન્સ, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ઇટલી અને જર્મની સાથે
13: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ.
14: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે, આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે.
13: કોલ 02089002323. ધ સ્ટાર ટૂર્સ,
14: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન.
15: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
16: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. From Europe to faraway places, the same delicious Indian food. Wherever you go, that's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

0: and get the headboard and drawers absolutely free. Hurry, deals are on while stocks last. K Furniture stores at Cricklewood, Harrow and Slap, or visit kfurniture.co.uk.
1: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप,
2: टेबल पे सिर्फ एक हीरो, जैमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स,
1: मसालेदार मसाला, टैंगी टोमेटो, सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर, ऑल इन जैमिन्स पोटैटो चिप्स।
2: जैमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स, देसी स्वैग इन एवरी बैग।
3: At Skylord Cruise and Holidays, we are cruise specialists,
4: bringing you incredible value and unforgettable luxury cruises worldwide.
3: Call today on 01923 883 100
4: or go to skylordcruiseandholidays.com.
3: Book with confidence.
4: We're Atoll protected.
5: Stick to the shopping list. Stick to the shopping list. Stick to the
6: unexpected bargain in the bagging area.
7: Oh well, lists are made to be broken. Especially for the flaming incredible gas barbecue at Aldi. Just £99.99. The Garden Event, Thursday 7th of May. Aldi Special Buy.

0: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on travelhubworld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call Travel Hub 24/7 on 0208-782-8833 or visit travelhubworld.com.
1: Travel Hub, best service with unbeatable price.
0: At all protected.
1: Visit travelhubworld.com.
2: Fire up the barbie! With Aldi's barbecue bundle, you can rustle up burgers to feed four. Get British beef quarter pounders, white rolls, baby leaf salad, cheese slices and tomato ketchup, all for under a super $6.50. That's flipping amazing value from Aldi. Which cheapest supermarket 2025?
3: Bank holiday offers end this Monday in the Furniture Village sale. Don't miss your last chance to save.
4: हिमालय कारपेट्स की मेगा बैंक हॉलीडे सेल शुरू हो चुकी है 500 से ज्यादा कारपेट रोल्स 30% तक रिड्यूस्ड तमाम रूम साइज रेमिनेंट्स पर अप टू 40% ऑफ वाइनल्स और रग्स सब पर रिडक्शंस हिमालय कारपेट्स की बैंक हॉलीडे सेल इज नाउ ऑन साउथ हॉल ब्रांच में तशरीफ लाइए या विजिट himalayacarpets.com
5: हिमालयन कारपेट्स फॉर लॉयल प्राइसेस हिमालयन कारपेट्स
6: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
7: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
6: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women.
7: Plus beautiful jewellery and accessories. Find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
6: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear. All in one destination.
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
9: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
8: High appreciation.
9: In Dubai.
6: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
10: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
6: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
10: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
6: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
10: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
6: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
10: ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
11: ਸਾਡੇ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਈਵ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕਾਈ 769 ਤੇ ਵਰਜਿਨ ਮੀਡੀਆ 811 ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੀ
12: The theatrical blockbuster Mrs. Kapoor's Daughter's Wedding is back for a third season. This time there's a wedding, a secret and a murder.
13: OMG!
12: Mrs. Kapoor's Daughter's Wedding 3, The Murder Mystery. As the celebrations begin, the truth turns deadly.
13: Murder Mystery!
12: Yes, at Beck Theatre, the 7th and 14th of June. Get your tickets now before the killer gets away. mkdw.co.uk. Exclusive radio partner, Lyco Radio.
14: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com चीज एंड सीज अप्लाई
15: हल्के फुल्के मोमेंट्स को और भी खास बनाए जैमिन स्नैक्स के हल्के फुल्के पफ बाइट्स के साथ
16: राइस कॉर्न से बने लाइट और क्वालिटी में बेस्ट जैमिन पफ बाइट्स जो है बारबेक्यू लेमन चिली मस्त मसाला और मैक्सिकन सालसा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल
15: जैमिन पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
17: काश मेरा मेरी हो जाए चाहे एक दिन के लिए सही
18: एक मिनट के लिए मेरे आंखों में देखो
19: A story full of heart now on the big screen
20: ये दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है
17: पर कल तुम्हें ये दिन याद नहीं रहेगा
13: Aamir Khan presents Ek Din is now showing in cinemas. Book your tickets and watch it today.
20: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
21: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Echo Microwave Food Containers.
1: पंकचोड़ा प्रेजेंट करे छे हास्यती भरपूर सुपरहिट नाटक बा अमारा बाजीगर कॉमेडी क्वीन लेडी अमिताभ प्रतिमाटी अने जीतू कोटक साथे यूके ना अलग अलग शहरों मा लाइव राइसलिप अल्बर्टन लूटन पॉटर्स बार फिंचली साउथ लंदन अने ईस्ट लंदन हास्य मनोरंजन अने फैमिली साथे एंजॉय करवानु परफेक्ट नाटक आज एज कॉल करो पी आर पटेल ऑन 0795755226
2: बा अमारा बाजीगर
1: 1 इंच ऑफ

0: Basmati Rice.
1: Disha Basmati Rice available at Kacha Bazaar, Whitechapel and Beckton Branch.
0: Disha Basmati Rice.
2: 105 सुपर हिट शोज पछी हवे लंदन मा आवी रहियो छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी
3: जेज एंटरटेनमेंट लेने आवी रहया छे सखणा रे जो हसबंड जी
2: लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनी फुल गारंटी शनिवार 27 जून ना 27 पाटीदार समाज वेम्बली पार्क मा रातना 8 वागे टिकट्स बुकिंग माटे विजिट करो eventbrite.co.uk कॉल करो वीडियोरामा अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655 सखणा रे जो हसबंड जी
4: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
5: No more worries for me.
6: Southall Travel, at all protected.
7: Are we there yet?
8: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
7: Relax, I've booked the Uber already.
8: How? My roaming isn't even working yet.
7: I switched to Simsy before we left London.
8: Simsy? Since when are you the tech expert?
7: Since I decided I want a stress-free holiday.
9: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
10: T's and C's apply.
11: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप
12: टेबल पे सिर्फ एक हीरो जयमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स
11: मसालेदार मसाला टैंगी टोमेटो सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर ऑल इन जयमिन पोटैटो चिप्स
12: जयमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स देसी स्वैग इन एवरी बैग
13: साढ़े दसवें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का पवित्र जन्म स्थान तख्त श्री हरिमंदर जी पटना साहिब दे लाइव दर्शन देखो सिर्फ जी पंजाबी स्काई 769 ते वर्जिन मीडिया 811 ते रोज सवेरे 3 बजे तो 8 बजे तक सिर्फ जी पंजाबी ते ही
14: फायर अप द बॉबी विद Aldi's barbecue bundle you can rustle up burgers to feed 4 get british beef quarter pounders white rolls baby leaf salad cheese slices and tomato ketchup all for under a super 650 That's flipping amazing value from Aldi. Which cheapest supermarket 2025?
15: Mantra Holidays wishes you and your family a holiday season filled with joy, laughter and unforgettable moments. As you celebrate, start planning your next adventure with us. Visit www.mantraholidays.co.uk or call 0203-773-633 now. APTA bonded.
16: Mantra Holidays.
17: What's your travel mantra?
18: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com T's and C's apply
19: काश मेरा मेरी हो जाए चाहे एक दिन के लिए सही
20: एक मिनट के लिए मेरे आंखों में देखो
21: A story full of heart, now on the big screen.
22: ये दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है।
19: पर कल तुम्हें ये दिन याद नहीं रहेगा।
21: Aamir Khan presents Ek Din is now showing in cinemas. Book your tickets and watch it today.
23: This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk.
24: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा डर कैसे, अगर जीत गए तो क्या कहना, अगर हारे भी तो बाजी मात न।

जैसे तू धड़कन मैं दिल, बिल्कुल इसी तरह जैसे आप हैं हमारे दिल की धड़कन. Thank you to everyone tuned into the Sunday Wrap on this beautiful bank holiday weekend. मैं हूँ मैसा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ. It's a show full of heartwarming music all the way up to 10 p.m. And of course, fun games भी हैं जो बस कुछ ही देर में शुरू होने वाले हैं. But that song, that beautiful track is from the movie Bajrangi Bhaijaan in the vocals of the one and only KK. I hope you guys enjoyed it. Lots more coming your way.

0: Mecca Radio.
1: You're tuning into the Sunday Wrap with me, Messa, on Laika Radio. And let's now kick off with our monthly feature, exciting Bollywood releases happening in this month of May. Ab aapko batati chalun ki May 2026 is really looking like a great month for Bollywood fans kyunki kafi sari exciting movies screens pe aane wali hain. Let's begin with Raja Shivaji, which features Ritesh Deshmukh. और ये मूवी ऑलरेडी 1st of May को थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है. सो व्हाट इज दिस मूवी? इट इज अ बायोपिक विच इज फोकसिंग ऑन द अर्ली लाइफ एंड स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस ऑफ द मराठा वॉरियर किंग छत्रपति शिवाजी महाराज. और रितेश देशमुख जो हैं इस फिल्म में टाइटल रोल निभा रहे हैं. वैसे बॉक्स ऑफिस की कहें तो फिल्म को काफ़ी इम्प्रेसिव ओपनिंग मिली है. एंड ये वीकेंड चल रहा है तो डेफिनेटली नंबर्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज. बट ऑन द अदर हैंड वी हैव अ कंपेटिटर. जी हाँ, अनदर मूवी विच हैज़ रिलीज्ड ऑन द सेम डे बट इट्स ऑफ अ कम्प्लीटली डिफरेंट जॉनरा. वी हैव आमिर खान प्रोडक्शंस की एक दिन, दैट मूवी हैज़ रिलीज्ड. इस फिल्म में है आमिर खान के साहबजादे जुनैद खान अलॉन्ग विद साई पल्लवी. और ये फिल्म जो है 2016 में रिलीज हुई थाई फिल्म वन डे की रीमेक है. एंड यू नो दिस वन इज डेफिनेटली फॉर ऑल द रोमांटिक हार्ट्स आउट देयर. इट्स अ लव स्टोरी. डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक ऑफ दिस मूवी अगर आपने इसे ऑलरेडी देखा है. मोर इंटरेस्टिंग रिलीजेस विल बी रिवील्ड इन जस्ट अ बिट ऑन द शो, बट फॉर नाउ इट्स टाइम फॉर द फर्स्ट क्लू टू जॉइन द डॉट्स.
0: Join the dots with Messa.
2: Laika Radio.
1: Join the dots. It is the game जो मैं आपके साथ खेलती हूँ in the first hour of my show, the Sunday Wrap, every weekend. इसमें बड़ा ही simple सा एक competition होता है. It's just a fun game जहाँ मैं आपको clues देती हूँ about a Bollywood film और आपको कम से कम clues में इस movie को पहचानना होता है. So let's see how many of you can guess today's Bollywood film correctly. All right. So pehla clue aapki taraf aa raha hai. Aaj ki movie 1999 mein release hui thi aur ye ek feel good family drama film hai which centers on a joint family. It is also a multi-starrer film with some very popular actors. जैसे बॉलीवुड के भाईजान हैं इस मूवी में, रियल लाइफ नवाब भी हैं और हीरोइंस में हमारी प्यारी लोलो भी हैं. और इस फिल्म को जिन्होंने डायरेक्ट किया है, ही इज समवन हु इज नोन फॉर मेकिंग सम ऑफ द बेस्ट मल्टी स्टार फैमिली ड्रामास इन बॉलीवुड. If you have any idea, you can send in your answers to our WhatsApp number. I'm going to repeat that clue once again. 1999 mein release hui ek feel good family drama film hai which centers on a joint family. It is a multi-starrer film with a lot of popular actors in the main leads jaise Bollywood ke bhaijaan, real life nawab aur hamari pyari lolo. And the film is directed by someone who is known for making some of the best multi-starrer family dramas in Bollywood. If you know the answer, send it across to this WhatsApp number.
0: WhatsApp Laika Radio Greater London now on 07424 22 22 22. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Laika Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

बस थोड़ी सी देर रह गई है हमारे साथ की आज, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 11 मिनट्स पास 9 पीएम, लेकिन मैं आपका साथ दूंगी फॉर अनदर 45 मिनट्स, डू नॉट वरी, एंड इन दिस आवर वी हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू.

0: travel.co.uk, your very affordable travel website. Thank you so much to everyone who's tuned into the show this evening. We have definitely been very, very busy with so much happening at the Leica Radio Network. We attended the opening of the UK Asian Film Festival, which runs from 1st to 10th May across London, Leicester, Coventry and Cumberland. Iske alawa, some of you met us yesterday at Kacha Bazaar in Beckton, and we indulged in rich taste of premium Adisha basmati rice there. That was fun, isn't it? And of course, Leica Radio has been shortlisted at the Audio and Radio Industry Awards, the ARIAs, for Best Radio Station, Best Local Radio Station. And this is a huge moment for us. And aapki duaon se, aapki support se, we are definitely gonna bring this home, Hannah. And congratulations to the fans of Peshawar Zalmi, kyunki Peshawar Zalmi has won the Pakistan Super League by 5 wickets today. And Aaron Hardy is the player of the match, along with Sufyan Moiz, who is the player of the series. So lots happening there, and we still have the IPL running, so you can listen to the Leica Radio Network for all your latest match updates. Well, in this hour, lots of beautiful tracks still lined up along with another fun game, so let's get started.
1: Catch me if you can with Mesa.
2: Leica Radio.
0: Catch Me If You Can is the game जो मैं आपके साथ लास्ट आवर ऑफ द शो में खेलती हूँ, जिसमें मैं आपको सुनाती हूँ तीन गाने, जिसमें से एक किसी गाने में मैं करती हूँ वर्ड्स की हेरा फेरी, एंड आपको ये हेरा फेरी पहचाननी है और मुझे सही जवाब लिख के भेजना है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस गेम गाइज. पहला गाना है
3: तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन
0: फ्रॉम दबंग. दूसरा गाना है
3: जग ढूंढे आ थारे जैसा ना कोई
0: फ्रॉम सुल्तान. और तीसरा गाना है
3: तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई
0: फ्रॉम वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई. अभी किसी एक गाने में मैंने की है गड़बड़ और आपको वो गाना पहचानना है. आई विल रिपीट दैट फॉर यू. पहला गाना है
3: तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन
0: फ्रॉम दबंग. दूसरा गाना है
3: जग ढूंढे आ थारे जैसा ना कोई
0: फ्रॉम सुल्तान. और तीसरा गाना
3: तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई
0: फ्रॉम वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई. बताइए किस गाने में हुई है वर्ड्स की हेरा फेरी ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर.
1: WhatsApp Leica Radio Greater London now on 07424 22 22 22.
4: Star Trek of the Hour sponsored by Star Tours. 28 साल का भरोसा हर साल हजारों happy travelers. इसलिए families के लिए Star Tours experience अलग होता है. Visit startours.co.uk.